0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार।
1: विमल बोलो जुबान केसरी।
2: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रिकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.

0: magic figure of 360. Now, where does this additional 2 come from? You've got Congress plus Samajwadi Party is at 136. These are the people who are right now very vulnerable. 9 remaining of the Trinamool Congress, Shiv Sena UBT 3, others 25, Aam Aadmi Party 3, JMM 3, Akali Dal 1, and that's Harsimrat Kaur Badal, and 7 independents. Sirf do ki aur zarurat hai, Sameer ji?
1: JM will support. Usne bol diya JM ne ki wo support kar sakta hai isme.
0: Aur
1: Shiv Sena Uddhav Thackeray ki jo party hai, uske Arvind Sawant ne bhi bol diya hai कि हम समर्थन कर सकते हैं इस बिल को क्योंकि 50% अगर सीटें बढ़ रही है तो हम इस पर विचार कर रहे हैं. तो मुझे लग रहा है कि उद्धव ठाकरे भी इसका समर्थन करेंगे और झारखंड मुक्ति मोर्चा भी समर्थन करने जा रही है.
0: यानी कि 360 मिल गए.
1: बिल्कुल.
0: बट इसमें की एक फिगर है, वन की फिगर,
1: उसमें से कई एब्सेंट भी रहने वाले हैं ना.
0: वन की फिगर वी आर अज्यूमिंग हर आशुतोष इज 22 ऑफ डीएमके. डू यू थिंक दिस 22 इज गोइंग टू क्रॉस ओवर एंड वोट विद द एनडीए? एंड व्हाई आई एम सेइंग दिस इज बिकॉज none less than Mr. Chidambaram said it. He really let the cat out of the bag when he said that NCP, Sharad Pawar and DMK is being aggressively wooed by the BJP. So they've got 360. Ashutosh.
2: See, Padmaja, we are assuming that the similar will be again table in the parliament. We are not, and the BJP is also conceding the point, because what are the DMK's point? The DMK's demand was that on the basis of population, we will be the sufferer. So, and they were demanding 50%. If the BJP is willing to give 50% formula, is going by the 50% formula, then who should have a problem?

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना रही।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में,
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा।
10: The fact that there is now suddenly a raging debate with regards to ethanol, why is it that it's happening now?
11: E20, madam, has been around for nearly 2 years now. There are 20 crore two-wheelers using E20. There are 20 lakh four-wheelers using E20. But I think the counter information which has been put out, that this is not something we've done suddenly, that E20 has been around for at least almost 2 years, that E15 has been around for 3.5 years. And by the way,

0: 8 of them are going to be joining. Now, YSRCP had already voted with the NDA, so 4 of theirs. We are also putting DMK over here, 22. I will tell you why in just a second. But basically, that means NDA is short of only 2 for that magic figure of 360. Now, where does this additional 2 come from? You've got Congress plus Samajwadi Party is at 136. These are the people who are right now very vulnerable. 9 remaining of the Trinamool Congress, Shiv Sena UBT 3, others 25, Aam Aadmi Party 3, JMM 3, Akali Dal 1, and that's Harsimrat Kaur Badal, and 7 independents. सिर्फ दो की और जरूरत है समीर जी.
1: जेएम विल सपोर्ट, उसने बोल दिया जेएम ने कि वो सपोर्ट कर सकता है इसमें.
0: तो बस और
1: शिवसेना शिवसेना उद्धव ठाकरे की जो पार्टी है उसके अरविंद सावंत ने भी बोल दिया है कि हम समर्थन कर सकते हैं इस बिल को, क्योंकि 50% अगर सीटें बढ़ रही है तो हम इस पर विचार कर रहे हैं. तो मुझे लग रहा है कि उद्धव ठाकरे भी इसका समर्थन करेंगे और झारखंड मुक्ति मोर्चा भी समर्थन करने जा रही है.
0: यानी कि 360 मिल गए.
1: बिल्कुल,
0: बट इसमें की एक फिगर है, वन की फिगर,
1: उसमें से एब्सेंट भी रहने वाले हैं ना.
0: वन की फिगर वी आर अज्यूमिंग हर आशुतोष इज 22 ऑफ डीएमके. Do you think this 22 is going to cross over and vote with the NDA? And why I'm saying this is because none less than Mr. Chidambaram said it. He really let the cat out of the bag when he said that NCP, Sharad Pawar and DMK is being aggressively wooed by the BJP. So they've got 360. Ashutosh.
2: See Padmaja, we are assuming that the similar will be again table in the parliament. We are not, and the BJP is also conceding the point, because what are the DMK's point? The DMK's demand was that on the basis of population, we will be the sufferer. So, and they were demanding 50%. If the BJP is willing to give 50% formula, is going by the 50% formula, then who should have a problem?
3: A fresh political showdown has erupted over Article 370 and Jammu and Kashmir statehood after the Congress leader's controversial remark. The BJP has launched a sharp attack on the Congress, accusing Saifuddin Soz of echoing Pakistan's narrative and questioning the timing of his remarks ahead of Parliament session. BJP has demanded that Rahul Gandhi and Congress President Mallikarjun Kharge clarify whether Soz's comments reflect the party's official stand. This comes after Congress leader Soz called for the restoration of the special constitutional provision and greater internal autonomy for Jammu and Kashmir. Speaking in Srinagar, Soz said the people of Jammu and Kashmir must fight for the restoration of Article 370, asserted that union territory status is only temporary, and said internal autonomy must be restored.
4: Hamara masla statehood ka nahi hai. स्टेटहुड कौन छीन सकता है? क्या कयामत तक यूनियन टेरिटरी इसको कोई बना सकता है? वजीर आजम हो या वजीर दाखला हो, कोई जम्मू कश्मीर रियासत को यूनियन टेरिटरी नहीं बना सकता. ये टेम्प्रेरी चीज़ है. हमारा असल मसला अंदरूनी दाखली खुद मुख्तारी है, और जम्मू कश्मीर के लोगों को 370 की बहाली के लिए लड़ना चाहिए.
5: देखिए, यहाँ तक प्रश्न 370 को लेकर है, 35A को लेकर है. इतिहास के पन्नों में जो कुछ गुम हो जाता है, चला जाता है, वो बाहर नहीं आता. और आज के संदर्भ में जब मैं बात करता हूँ, केंद्र में वही सरकार है, वही देश के प्रधानमंत्री हैं, वही देश के होम मिनिस्टर हैं, जिन्होंने 370 को 35A को निरस्त किया था. ख्याली पुलाव बनाना बहुत अच्छी बात है, बनाने चाहिए, लेकिन देश के हित में जो है, जम्मू कश्मीर के हित में जो है, वही कांग्रेस को जो है वो सोचना चाहिए.
6: राहुल गांधी जी, एज यूजुअल, फ्रॉम अ सस्पिशियस एंड कॉन्स्पिकुअस फॉरेन टूर, ही हैज जस्ट लैंडेड इन इंडिया एंड एवरीबॉडी वाज थिंकिंग दैट हाउ कम एनी नॉन इंडियन और एंटी नेशनल स्टेटमेंट हैज नॉट कम. द मोमेंट ही हैज पुट हिज फुट ऑन द pious land of India, a dastardly statement has come from Mr. Saifuddin Soz, who is a senior most leader of Congress party, former union minister and former president of Jammu and Kashmir Congress. He has gone to the extent that Jammu Kashmir doesn't require only statehood, but it requires to restore 370. He goes beyond and says that our main target is dakhili khudmukhtari, means sovereignty in India.
7: Congress party आतंकवाद को soft support कर रही है. Congress party के

0: नेता ये कह रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर वो आर्टिकल 370 को वापस से लेना चाहते हैं। इससे ये मतलब है कि कांग्रेस पार्टी अगर सरकार में कभी आई तो जम्मू कश्मीर के अंदर आतंकवाद, अलगाववाद और पत्थरबाजी को बढ़ावा देगी। दिस एक्सपोजेस कांग्रेस पार्टीज एंटी इंडिया पॉलिटिक्स, और यही राहुल गांधी की असली पॉलिटिक्स है। वो भारत जोड़ों में विश्वास नहीं रखते, भारत तोड़ों में विश्वास रखते।
1: This is not Indian National Congress, it is Islamabad National Congress. Congress was not speaking only for statehood. They are actually talking about separatehood for Jammu Kashmir and they are echoing Pakistan's line. Saifuddin Soz has proven it. Saifuddin Soz, who has batted for Afzal Guru and Burhan Wani in the past, says that forget statehood, we want 370 to be restored. 370 being restored means Indian constitution should not apply. It means that the tribals and the Vanchit Samaj should not get reservation. It means that the RTI and other important laws should not be applied. It means that they should play into the hands of Pakistan, which wants PP, Pakistan Prasti, Patharbaji, not democracy, development. And Congress is echoing this line.
2: Saifuddin Soz saab ek educationist hain, professor hain, politician hain aur buzurg hain. Unhone jo bayan diya hai 370 के हवाले से, उसमें कोई गलत बात नहीं है। जम्मू कश्मीर को जब हम डिस्कस करते हैं तो जब एक्सेशन हुआ, महाराजा हरी सिंह ने एक्सेशन किया 1947 में, तो उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो जो कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था दिल्ली में, उस वक्त दो जम्मू कश्मीर के नुमाइंदे और उनके नुमाइंदों ने कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 370 का प्रोविजन रखा और 35 है बाद में उसमें जोड़ दिया गया।
3: The controversy comes even as National Conference Party continues to press for the restoration of Jammu and Kashmir statehood. Listen in to Omar Abdullah.
4: रियासत का दर्जा ये जम्मू कश्मीर के आवाम के ऊपर एहसान नहीं है, ये जम्मू कश्मीर के आवाम के साथ एक वादा किया गया था। इस वादे में सिर्फ नेशनल कॉन्फ्रेंस शामिल नहीं है, इस वादे में तमाम वो पार्टियां शामिल हैं जिन्होंने पौने दो साल पहले इलेक्शन लड़ा।
3: On that note, we slip into a short break. When I'm back, we're going to talk all things FIFA, the big win for Argentina, the big disappointment for England. More on that in moments from now. Stay tuned.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉलमार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में,
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा।
10: बाय नाउ सेल इमीडिएटली।
11: होल्ड इट बॉस।
12: बाय नाउ सेल।
13: होल्ड होल्ड।
12: बाय
13: सेल इमीडिएटली।
14: कंफ्यूज्ड? व्हाट टू बाय, व्हाट टू सेल, व्हाट टू होल्ड? आस्क प्रॉफिट विद महिमा एंड पुनीत, Monday to Friday, 10:30 a.m. Only on NDTV Profit.
15: Our pure Shahi Paneer Masala. Delicious, healthy, every day.
16: The fact that there is now suddenly a raging debate with regard to ethanol, why is it that it's happening now?
17: E20, madam, has been around for nearly 2 years now. There are 20 crore two-wheelers using E20. There are 20 lakh four-wheelers using E20. But I think the counter information which has been put out, that this is not something we've done suddenly, that E20 has been around for at least almost 2 years, that E15 has been around for 3.5 years, and by the way, in the last 18 months or 24 months, there have been no complaints.
15: Meetha ya namkeen, chahe jaise khao, 100% suji se bani

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉलमार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिल में,
7: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
8: वाओ मामा क्या स्वाद है।
9: अरे मेरे राजा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद के हित तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबा केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: The Delhi High Court has stepped in as activist Sonam Wangchu's indefinite hunger strike entered its 19th day, hearing a petition that warned his condition could turn critical within the next 48 hours. The court directed the government to ensure his health and safety. It ordered that a government doctor monitor Wangchu and said that any medical intervention necessary to save his life should be actually provided.
1: हैरानगी की बात यह है कि 18 दिन हो गए अभी उनको, 19वां दिन शायद चल रहा है, 9 किलो के आसपास वजन उनका कम हुआ है, उनकी तबीयत पर इसका असर पड़ रहा है, लेकिन हुकूमत तस से मस नहीं कि किसी तरह वो उन्हें अपील करें कि अपना भूख हड़ताल वो रोक दें। सियासत अपनी जगह, लेकिन कहीं ना कहीं इंसानियत और रहम के लिए भी जगह होनी चाहिए।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
4: अरे मेरे राजा।

0: को मॉर्निंग को 4-4:30 बजे के आसपास उसकी तबीयत एकदम डाउन होने लग गई, बीपी एकदम लो हो गया और घबराहट होने लग गई। पंखा पंखा पंखा, हमने सारे पंखे वंखे सब वहाँ पे लगा दिए। डॉक्टर को कंपाउंडर को बोला तो उन्होंने बोला वेट वेट वेट वेट करते करते सुबह 6-6:30 बजे डॉक्टर आया वहाँ पे। उन्होंने डायरेक्टली बोला कि नीचे आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ेगा। फिर आईसीयू में शिफ्ट किया हमने उसको, उसकी ब्लीडिंग रुकी नहीं लगातार तक। तो उसके दूसरे दिन तो उन्होंने मृत्यु घोषित ही कर दिया उसको सुबह मॉर्निंग में 10 बजे 7 तारीख को। लास्ट में आगे बताते हमें कि किडनी फेल हो रही है इनकी, ये हॉस्पिटल की लापरवाही है पक्का, हॉस्पिटल प्रशासन की लापरवाही है।
1: Families told NDTV they are still struggling to obtain complete medical records and say they have received little support after losing their loved ones.
2: मुझे डॉक्टर के लापरवाही लग रही है। अब ना तो बच्चे के लिए कुछ है ना मेरे लिए कुछ है। 3 महीने से घर बैठा हूँ, मकान किराया का मेरे पास।
1: NDTV report also raised questions over post-operative monitoring, possible lapses in infection control, and the multiple investigations still underway into IV fluids, surgical consumables and other possible factors. Officials maintain that the exact cause has not yet been established. Now the government says every maternal death will be reviewed separately. Hospital-wise reports have been sought. Compliance with infection control SOPs will be scrutinized. And if negligence is found, officials say accountability will follow.
3: We've called them all, having a brainstorming. So we are trying to see as quickly as possible to arrive at some what the problem is.
1: The health minister will also visit Bhilwara, where 5 maternal deaths were reported in 6 days, and Banswara, where 2 more maternal deaths have raised fresh concerns. The government has now moved into action. But for families who have lost daughters, wives and mothers, the questions remain unchanged. What caused these deaths? Could they have been prevented? And who, if anyone, will ultimately be held accountable? With Bismi Taksin and Harsha Kumari Singh, NDTV Bureau Report.
4: All right, we have some breaking news coming in, this time from West Bengal. TMC has now called for massive protests over Kolkata Airport mosque row. And this is, of course, let's tell you about what the issue is on the proposed relocation of the airport mosque. Now, TMC leader Siddiqullah Chaudhary has now said that the relocation of the airport mosque is perhaps an attack on our community. And he's perhaps urged all the TMC workers, he says, I urge 1 crore Muslims in West Bengal to wear black armbands and come out and protest against this. Take a listen.
5: आप अगर विकास का एक नोटिस लगा देते अथॉरिटी के साथ 24 इयर्स हमारा लेन देन है, चिट्ठी है, चिट्ठी देने में क्या परेशानी है उनको, नोटिस देने में क्या परेशानी, बातचीत करने में क्या परेशानी, गुंडागर्दी इसलिए है हम पर वार करने की कोशिश हुई है। हम लोग मोहल्ले वाले हिंदू भाई एक साथ रहते हैं, हम बाबा मारामारी नहीं चाहते। आइंदा कल जुमा है, इस जुमा के दिन बंगाल के 1 करोड़ मुसलमान माँ बहनों से गुजारिश की कि ये बैज पहनेंगे, ये पहनेंगे, नमाज पढ़ने जाएंगे, अल्लाह से दुआ करेंगे और पुरअमन एहतजाज करके चले आएंगे और इसमें कोई प्रदर्शन नहीं होगा। एक बात, प्रदर्शन में ना माइकिंग, ना कैनवेसिंग, ना जबरदस्ती, कुछ नहीं होगा। आप उल्टा उल्टी बात मत कीजिए। हम लोग जुमा की नमाज कल 11:30 बजे गेट पर जाएंगे, मोहल्ले का आदमी, बंगाल का कोई आदमी नहीं होगा। हमारी मस्जिद है, ये लीगल अथॉरिटी कोई उठा, कोई कागज तो कोई इधर जाओ।
4: We have, you heard the TMC leader there giving that call for various TMC leaders, also for Muslims to come out and protest against.

0: रिकमेंड करता हूँ। 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
1: Today's last word becomes tomorrow's first edge.
2: When markets close, clarity matters as much as speed.
1: We break down what stayed beneath the surface and what could follow.
2: Because the last hour today gives you the head start you need tomorrow.
1: Join us before every closing bell
2: on India Market Close.
3: The fact that there is now suddenly a raging debate with regard to ethanol, why is it that it's happening now?
4: E20, madam, has been around for nearly 2 years now. There are 20 crore two-wheelers using E20. There are 20 lakh four-wheelers using E20. But I think the counter information which has been put out, that this is not something we've done suddenly, that E20 has been around for at least almost 2 years, that E15 has been around for 3.5 years. And by the way, in the last 18 months or 24 months, there have been no complaints.
5: That if a boy from Ahmedabad with no capital and no connections could build, then there must be 1,000 more Gautam Adanis sitting undiscovered.
6: Jinke idea. है दमदार, वो सब है वंदे भारतम के नेशनल स्टेज के हकदार. प्रो इनोवेटर्स रजिस्ट्रेशन करो vandebharatam.org पर 19 जुलाई तक. एन इनिशिएटिव बाय गौतम अदानी.
1: द शिव सेना शिंदे फैक्शन कॉर्पोरेटर इज सीन असॉल्टिंग अ फीमेल डॉक्टर एंड नर्सेस एट अ हॉस्पिटल इन डोंबिवली.
7: द थग यू सी is Shinde Sena Corporator Ramesh Mhatre of Dombivli. Deputy Chief Minister Eknath Shinde, I have a direct question for you tonight. Will your government immediately arrest this rowdy, Ramesh Mhatre?
8: We learned that the action has been taken against the thug Neta that we see on our screens right now. FIR has been registered against this man.
9: And joining me live from Mumbai is Ramesh Mhatre. Kya aapko zara bhi sharam nahi aati hai? Aapko kisne haq diya haath uthane ka?
10: Humko haq हमारे पार्टी के बालासाहेब ठाकरे ने दिया. जहाँ भी अन्याय हो,
9: आप कॉर्पोरेटर हो या गुंडे हो सर, नेशनल टीवी पर हैं आप, क्या आप माफी मांगेंगे कि आप
10: अगर हमारे कॉर्पोरेशन में एक पेशेंट के लिए, पेशेंट को इलाज करने के लिए अगर ऐसा हमको करना पड़ता है, उसका हमको अफसोस है.
9: इसका मतलब कि आगे जाके भी अगर अगर अगर अगर चाहे तो ऐसे ही करेंगे. क्या आप उनसे माफी मांगेंगे या नहीं मांगेंगे?
10: प्रशिक्षण हम हमारे
9: नहीं मांगेंगे
10: सर.
11: समर में बाल्टी तो चाहिए फॉर योर पसीना.
12: बाल्टी.
11: और मानसून में बाल्टी तो चाहिए फॉर छत का पसीना. पसीना मत बहाओ, बर्जर रूफ कूलेंट सील लगाओ. ये छत के क्रैक्स को करे सील और आपको दे ठंडा फील. बर्जर रूफ कूलेंट सील.

0: हमारे देश के बच्चों के लिए अपनी जान दांव पे लगा के पिछले 19 दिन से अनशन कर रहे हैं, आज उनका 19वां दिन है। लद्दाख के लिए देश के लिए उन्होंने पहले भी कई बार अनशन किए, जिस तरह से उन्होंने देश के लिए आज अपनी जान दांव पे लगाई हुई है उनका सलाम करता हूं।
1: आई हैव नेवर गिवन अ स्टेटमेंट आउट लाइक दिस, बट आज हम उसे रहा नहीं जा रहा। सोनम वांगचुक, हम सब इन्हें जानते हैं, हम जानते हैं कि इन्होंने हमारे देश के लिए क्या किया, इनकी अचीवमेंट्स क्या है, इन्होंने कितने अवार्ड्स जीते हैं। आज वो 18 दिन से अनशन पर बैठे हैं, भूखे हैं, कुछ खाया नहीं है, ये किसके लिए बैठे हैं? ये उन बच्चों के भविष्य के लिए बैठे हैं जो उन्हें दिख रहा है कि बर्बादी की तरफ जा रही है। ये उन बच्चों के लिए लड़ रहे हैं जिन्होंने अपनी जान खो दी। ये एक सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं जो सही तरीके से नहीं चल रहा। आप जानते हैं, मैं जानती हूँ, सब जानते हैं।
2: Now amidst this entire call, whether the government is being insensitive as far as Sonam Wangchuk's fast is concerned, whether there should be more humane approach in matters like these, serious concern is about what happens in the next 48 hours. And that is exactly what the High Court today spelled, in fact, their concerns about. So what has happened in the health plea? Delhi High Court has said, ask the government keep a regular check about his health. The government is saying that the health checkups are being done regularly. The health bulletin sort of a thing is also coming out every day. Intervene if necessary. And the center's reply is everyone informed of health parameters. We have informed them what are the critical parameters as far as Sonam Wangchuk is concerned. Does that mean that, now we are reaching that threshold where possibly, forcibly, Sonam Wangchuk would have to be, taken away from his fasting position, the place where he's fasting in Jantar Mantar, or some sort of medical intervention will be required? Or does it also mean that the government now at least needs to come out and have some sort of a dialogue as far as Sonam Wangchuk is concerned? Let's very quickly go across at this moment to my colleague Kanika Katiyar, who is joining us live from Jantar Mantar as we speak. Just give our viewers, Kanika, a sense, not just about the politicians, those who have come there, but as the days are progressing, is there also a sense that there are more people coming, galvanizing and rallying behind Sonam Wangchuk?
0: अंग्रेजी में एक कहावत है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ।
3: वैसे अंकित, मैं बिल्कुल जंतर मंदिर पे उस जगह पे मौजूद हूँ जहाँ पे सोनम वांगचुक जो है लगातार पिछले 19 डेज से हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं। आपको मैं वीडियो दिखाना चाहूंगी दर्शकों के लिए भी, किस तरह से हंगर स्ट्राइक जो है वो लगातार जारी है। 19वां दिन है, सोनम वांगचुक लगातार जो है वो हंगर स्ट्राइक पे है और डिमांड जो है वो यही है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा होना चाहिए। लेकिन इस वक्त जो है अरविंद केजरीवाल और उनके तमाम जो नेता है आम आदमी पार्टी के, वो इस वक्त आपको यहाँ पे दिखाई देंगे। अरविंद केजरीवाल जो है सोनम वांगचुक से मुलाकात करने आए हैं और इसके अलावा तमाम जो ऑपोजिशन के लीडर हैं, चाहे वो डिंपल यादव हो, तमाम और नेता हो, वो लगातार सोनम वांगचुक से मुलाकात करने जंतर मंतर पहुंच रहे हैं। अब से कुछ देर पहले डिंपल यादव भी यहां पहुंची थी और लगातार जो ऑपोजिशन के नेता हैं वो ये डिमांड कर रहे हैं कि सोनम वांगचुक को अपनी हंगर स्ट्राइक को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से उनकी मेडिकल हेल्थ की रिपोर्ट बार बार निकल के आ रही है उसके चलते जो है ये डिमांड की जा रही है। लेकिन फिलहाल मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगी उस प्रोटेस्ट की जो पिछले 19 से यहाँ पे चल रहा है। तमाम जो यूथ है, तमाम जो लोग हैं वो यहाँ पे मौजूद है। इसके अलावा जो है सोनम वांगचुक पिछले 19 दिन से हंगर स्ट्राइक पे हैं, लगातार उनके मेडिकल टेस्ट भी हो रहे हैं। ये पूरा मामला हाई कोर्ट में भी गया है
2: जी।
3: उसके अलावा जो है हाई कोर्ट की ओर से कहा गया है सरकार को कि रेगुलर उनके बेसिस पे मेडिकल चेकअप होने चाहिए। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर अब जो ऑपोजिशन है वो एक साथ नजर आ रहा है। लगातार तमाम जो ऑपोजिशन के अलग अलग लीडर हैं वो यही मांग कर रहे हैं सोनम वांगचुक से कि वो अपनी हंगर स्ट्राइक को खत्म करें, अपनी हेल्थ के बारे में सोचें।
2: जी,
3: लेकिन सोनम वांगचुक ने कल एक वीडियो किया जिसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि वो अपनी हंगर स्ट्राइक को नहीं खत्म करेंगे।
2: All right, Kanika, thank you for joining us with that live update. We'll keep coming back to you, as of course in the evening there will be a health bulletin for Sonam Wangchuk as well. But the fact is that this does increase the pressure as far as the Congress party is concerned. A lot of questions have been asked. Why is Rahul Gandhi, the leader of the opposition, not going there? But the question also is, why is nobody from the government paying heed to what Sonam Wangchuk's health situation is? Why shouldn't somebody, a minister or somebody, emissary of the

0: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
1: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
2: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
3: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
4: कुछ तो बात है इस दिल में,
5: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
6: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।
7: We are over, Jimmy.
8: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
9: प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
10: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ एलीट प्रोफाइल्स और 100% कॉन्फिडेंशियलिटी। एलीट मैट्रिमोनी, इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल मैच मेकिंग सर्विस। एलीट
9: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
11: और जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
3: द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
4: कुछ तो बात है इस तेल में।

0: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
1: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
2: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
3: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
4: कुछ तो बात है इस दिल में।

0: देश का टायर जेके टायर।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।
3: वी आर ओवर जिमी।
4: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा,

0: देख लो।
1: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
2: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
3: That if a boy from Ahmedabad, with no capital and no connections, could build, then there must be 1,000 more Gautam Adanis sitting undiscovered.
4: जिनके आइडियाज हैं दमदार, वो सब हैं वंदे भारतम के नेशनल स्टेज के हकदार। प्रो इनोवेटर्स, रजिस्ट्रेशन करो vandebharatam.org पर 19 जुलाई तक। An initiative by Gautam Adani.
1: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर व मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद हर रोज।
5: हिंदुस्तान मिले हिंदुस्तान से,
6: देश का टायर जेके टायर।
7: पर जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल ने प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
8: The mustard specialist since 1933, बरसों से सरसों।
9: कुछ तो बात है इस तेल में।
10: This is the show where we bring you all the hot and happenings from the world of entertainment and lifestyle.
11: Really?
10: Fashion that made you gag. Films that made you fangirl. Art that made it to the gram. And trends that kept us with the program. Let's get it. Hello and welcome to a brand new show. I am your host Mayank Chaudhary and this is Limelight.

0: responsibility of the government as a whole. But they also made it equally clear that when it comes to the delimitation bill, they will not allow to pass it in parliament.
1: Without opposition's support, how can they bring all this constitutional amendment bill? They have to discuss with opposition. Let us have an idea about what they are going to bring. Then we will tell.
2: मैं समझता हूँ कि आम तौर पर ये परंपरा है कि जब भी कोई ऐसा बिल या कोई ऐसा अमेंडमेंट, संविधानिक अमेंडमेंट अगर सरकार लाती है तो विपक्ष को विश्वास में लेती है, विपक्ष से बातचीत करती है। अगर आप ऐसा बिल लाने वाले हैं तो आप पहले उस पर विपक्ष के लोगों का विश्वास प्राप्त करें।
0: So what happens now to the government's Mission 360? Will it be a reality or not? With even INDI parties now showing signs of a rethink. In fact, every single day, they seem to be swinging one way and then the other the next day. Will the Congress find itself fighting a lonely battle? Or is this still mission impossible for Modi Sarkar?
3: DMK will not support BJP. They may seek our support, but we will not do it. DMK will not support BJP. They may seek our support, but we will not do it. DMK will not support BJP. They may seek our support, but we will not do it.
4: Dear partners are confident. We, the BJP, is confident. But you may be surprised to know that the Congress CM of Telangana is also confident that delimitation is going to happen. Women's reservation bill is going to happen.
5: Not just the NCP, several other parties will definitely be coming on board to support the delimitation bill, because political parties understand the relevance of this particular bill. Except parties which are not in interest of women empowerment, all the other parties will support delimitation, because this is going to actually empower, not just on paper, but in actual practice. Women will get more authority, more power, and more representation within the government functioning.
0: All right, so what happens? Shehzad Poonawalla, spokesperson of the BJP, joins us along with political analyst Sanjay Jha, who will be joining us in just a second. We also have Abbas Haider of the Samajwadi Party with us. Shehzad Poonawalla, hobe na. So much jod tod you have done, 22 from TMC, 6 from Shiv Sena UBT. But it seems the DMK is going to be the runaway bride. They are going to stiff you at the altar.
6: See, Padmaja, I am not in the habit of doing mundan of a baby that is not born. Just now, I have got the agenda of the parliament session, which has come from the government side. Income tax amendment bill, Supreme Court number of judges amendment bill, registration of birth and death amendment bill, prevention of insult to national honor amendment bill, MSME development amendment bill. इसमें किधर है delimitation?
0: Are you saying delimitation bill आप नहीं लेके आएंगे?
6: अब इसमें ये है कि मैं तो भविष्यवाणी राहुल जी वाली नहीं कर सकता. राहुल जी की भविष्यवाणी मेरे में नहीं है वो स्किल्स, बट राइट नाउ द बिल इज एज मच एज एन ऑफर एज द आई डोंट वांट टू यूज द एनालॉजी बट एज द हेयर ऑन संजय हेड इट्स नॉट देयर ऑन द टेबल बट लेट मी कंप्लीट नो प्रॉब्लम क्या है मैं कविता के फॉर्म में लिख के आया हूँ केवल आनंद दुबे नहीं करते कविता मैं भी करता हूँ जहां पड़े राहुल के कदम वहां पे पार्टियों ने तोड़ा दम हो गई पार्टियां एक के बाद एक खत्म सब समाप्त करेंगे राहुल जी का ये है वादा और दम ऑपरेशन टाइगर नहीं एक्चुअली चल रहा है ऑपरेशन विलयम देयर इज नो ऑपरेशन टाइगर इट इज ऑपरेशन विलयम आई टेल यू व्हाट राहुल गांधी टचेस आरजेडी आरजेडी ओवर देन दे से आरजेडी यू कम एंड मर्ज विद अस राहुल गांधी टचेस शरद पवार पार्टी शरद पवार जी पार्टी ओवर देन दे से कम एंड जॉइन अस नाना पटोले मेड दैट ऑफर राहुल गांधी टचेस टीएमसी टीएमसी ओवर राहुल गांधी इज नाउ गिविंग एवरीडे धमकी टू समाजवादी पार्टी इमरान मसूद के हाफ हाफ सीट दे दो सो एक्चुअली इट इज कांग्रेस विच इज ऑन द लर्च कांग्रेस इज सेइंग कि बीजेपी आ रहा है आप विलय कर लो नो कांग्रेस की इस बदनीयती के लिए हम जिम्मेदार नहीं है नोबडी वांट्स टू बी इट राहुल फॉर इंस्टेंस
0: और सारा विलय आप में हो जाता है नहीं, नहीं, मेरा के उनके 6 सांसद आप में विलय हो जाते हैं है? अरे शिवसेना यूबीटी 6 ऑफ देम यू
6: टू नहीं आए
0: 20 अरे शिव से अच्छा ठीक है शिवसेना में गए हैं
6: एक ही शिवसेना है There is only one Shiv Sena. That is Adwani.
0: NCP आए तो आपके पास आ रही है ना?
6: नहीं नहीं ऐसा है सुनिए.
0: They are working under the leadership of the BJP
6: party. It is having alliance with NDA alliance.
0: Yes.
6: It is not with BJP. Technically, in fact, Adhir Ranjan Chaudhary said TMC MLS join me. Nana Patole said NCP Sharad Pawar join me. NCP Sharad Pawar fractionally reduced. And now I'll tell you last statement. Imran Masood has said Akhilesh is not speaking up for Muslims. Akhilesh is useless. Give us 50% seats. Am I lying? I'll make you hear the statement.
0: No, I heard the statement.

0: it in length, and even the Samajwadi Party wanted reservation within reservation for the SC, ST, OBC women, so that they should be giving their right. And we wanted that that bill should be, you know, that should, in 2024 Lok Sabha election, women reservation should be given to the women of this country, but which was not given. Samajwadi Party is also giving a monsoon offer to Mr. Poonawalla's party. We are saying that why don't you pass women reservation bill before 2027 assembly election in Uttar Pradesh. We are going to support it. See, the thing is, in the name of delimitation, if you are trying to distort the federal structure of the country, if you are trying to distort the constitution values of the country, the Samajwadi Party will never let it happen.
1: So are you supporting the delimitation bill or not?
0: Bharatiya Janata Party has been...
1: Are you supporting it or not? Because many people are
0: not
1: saying the feelers have gone up to gone out to Ram Gopal Yadav ji.
0: Women's reservation. We are in support of women's rights. But the Bharatiya Janata Party, they are saying women reservation and they are trying to pass the delimitation.
1: Are you categorically saying that Samajwadi Party is not going to vote in favor of the delimitation bill if it is brought in monsoon session? Yes or no?
0: When the treasury bench is not sure that they are going to get it in the house. When the BJP spoke,
1: Abbas Haider, Abbas Haider, your refusal to take a stand is going to worry Sanjay Jha a lot. Bol dije na, you had opposed it, you voted against it in April. Say no, we will not vote for it.
0: Obviously, on 17th of April, this bill fell. The similar way, if they are getting it back, it is going to fell once again.
1: Okay, great.
0: Their intent
1: is categorical. Samajwadi Party is going to vote against it. Your whole, tukka of Dimple Yadav wants to vote in favor of it. It's not okay.
2: First of all, my dear friend Abbas Haider, ko main bata dun ki ye jo mathematics ka calculation kya, ye to Amit Shah ji ne pichle session mein bataya tha. Aur unhone to bola tha, ek ghanta de do, main likhwa ke lata hun ye baatein. और सुप्रिया सुले को भी सर 20 सेकंड्स जस्ट 20 सेकंड्स अब्बास जी जस्ट 20 सेकंड्स देन यू कम इन उस अभी जब सुप्रिया सुले ने मराठी में बाइट दी तो उन्होंने ये गणित समझाया तो मैं तो सुप्रिया सुले की बात सुन के आपको गणित समझा रहा हूँ दूसरी बात उत्तर प्रदेश के लोग देख लो आपकी 120 सीट होने वाली है अब्बास भाई बोल रहे नहीं करनी है अब्बास भाई बोल रहे 120 सीट नहीं होनी चाहिए उत्तर प्रदेश की अब बाकी अब्बास भाई तय करे समाजवादी पार्टी तय करे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है उत्तर प्रदेश की 120 सीट से इनको प्रॉब्लम है बिहार की 60 सीट से इनको प्रॉब्लम है महाराष्ट्र की 72 सीट से उनको प्रॉब्लम है मैं तो केवल दर्शक को बता रहा हूँ कि आपकी 120 सीट होने वाली थी ये अब्बास भाई बोल रहे कि नहीं करनी है
1: अब्बास हैदर
2: ठीक है कोई समस्या नहीं
0: ये दिस इज द पॉलिटिक्स ऑफ भारतीय जनता पार्टी पद्मजा जी यही करते हैं ये
2: अरे आपने मना किया
0: बिल नहीं लाए अरे साहब ये होने जा रहा
2: था तो आप है साथ में नहीं है
0: बैंक अकाउंट में आने जा रहे थे अब्बास हैदर कह रहे नहीं आने दो वरना तो हम 15 लाख दे देते काला धन विदेश से आने जा रहा था अब्बास हैदर कह रहे नहीं नहीं मत आने दो वरना उत्तर प्रदेश के हर आदमी को लाखों रुपए बैंक अकाउंट ये क्या बात कर रहे हैं मतलब जहां पे आप बिल भी नहीं लाए हैं अभी टेबल बिल नहीं हुआ आप खुद कह रहे हैं कि नहीं नहीं अभी कोई बिल है ही नहीं कोई जेपीसी नहीं बनी कहीं कोई बिल स्क्रूटनी में नहीं आप हवा में जो है तीर चला रहे हो कह रहे हैं अब्बास हैदर ये कह रहे हैं
2: चलिए मैं इसको थोड़ा मैं इसको रियल कर देता हूं चलो रियल कर देता हूं पद्मजा की डिबेट के सुनिए ना सर सुनिए आप बोल रहे ना सब इमेजिनरी हो रहा है चलिए आई एक्सेप्ट पद्मजा ने आज ये डिबेट रखा है कि लेट्स अज्यूम दैट दिस बिल विद वुमेन्स रिजर्वेशन इज ब्रॉट आई एम सेइंग कि ये 120 सीट्स होगी उत्तर प्रदेश की आर यू सपोर्टिंग आर यू रिजेक्टिंग
0: सर पॉलिटिक्स इज नॉट बेस्ड ऑन अजम्पशन पॉलिटिक्स
2: अब देखो उत्तर प्रदेश के लोगों देख लो अखिलेश जी देख लीजिए आपके पार्टी के प्रवक्ता है
1: ओके लेट्स टेक दिस बियॉन्ड द रियलम ऑफ अजम्पशन एंड बिफोर आई कम टू यू संजय झा लेट्स पुट आउट द एक्चुअल नंबर्स एज थिंग्स स्टैंड राइट नाउ लेट्स डू अ नंबर ऑफ परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस व्हिच विल हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स कुड शेप अप इफ एंड सिंस शहजाद पूनावाला इज सेइंग दैट दिस इज नॉट इन द एजेंडा जस्ट एज येट इफ द गवर्नमेंट डज ब्रिंग इन the bill now the existing strength is at 358 and you see the math over there in making this math we have assumed that the DMK is going to be voting along with the NDA you see that number of 22 there so the magic number is 360 in Lok Sabha here the NDA is short by just 2 but if the DMK and I'm predicating this only on what TKS Ellen Govan has said if the DMK was to vote against the bill then the NDA would be short by 24. And that is where this column of rest of the house, the 209 there comes into play. So the DMK is there. Could the others in that blue column, people like the JM, the Shiromani Akali Dal, the seven independents,

0: हर पल बनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
3: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
4: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933। बरसों से सरसों।
6: कुछ तो बात है इस दिन।

0: देश का टायर जेके टायर।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।
3: वी आर ओवर जिमी।
4: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा। आप अपना देख लो।
5: आर प्योर शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
6: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ। 17 years of experience, largest database of elite profiles, और 100% confidentiality. Elite Matrimony, India's most successful matchmaking service for the elite.
5: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट, सेहतमंद हर रोज।
7: और जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल में प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है, शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
8: The mustard specialist since 1933, बरसों से सरसों।
9: कुछ तो बात है इस तेल में।
10: Despite heavy rain, lakhs of devotees gathered in Puri for the annual Rath Yatra amid chants of Jai Jagannath. Lord Jagannath, Lord Balbhadra and Devi Subhadra began their sacred journey from the Shri Mandir to the Shri Gundicha temple in Puri in Odisha, leaving you with these visuals.
11: Summer mein balti to chahiye for your pasina.

0: याद है ना मैंने क्या सिखाया था? सिल्वर के लिए स्टर्लिंग मार्क, गोल्ड के लिए हॉल मार्क
1: और मस्टर्ड ऑयल के लिए सिर्फ पी मार्क।
2: इस बार तो माँ से भी बेहतर बना।
3: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
4: कुछ तो बात है इस दिल में,
5: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
6: वाह मामा क्या स्वाद है।
7: अरे मेरे राजा।
8: We are over, Jimmy.
9: Hey, life में scratches तो आएंगे। गाड़ी के scratches को तो Cosmo PPF संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
10: और शाही पनीर मसाला, डिलीशियस हेल्दी एवरीडे।
11: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमोनी क्यों रेकमेंड करता हूं? 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ एलीट प्रोफाइल्स और 100% कॉन्फिडेंशियलिटी। एलीट मैट्रिमोनी, इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल मैच मेकिंग सर्विस। मोदो एलीट।
10: मीठा या नमकीन, चाहे जैसे खाओ, 100% सूजी से बनी आर प्योर वर्मिसली, स्वादिष्ट सेहतमंद।
12: और जब इंसान प्रकृति के साथ सामंजस्य को आत्मसात कर लेता है तो वो मधुर और लालन पोषण करने वाली बन जाती है। पी मार्क सरसों के तेल में प्राकृतिक तरीके से सरसों के तेल को बनाया है, शुद्धता और गुणवत्ता के साथ।
3: द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933, बरसों से सरसों।
4: कुछ तो बात है इस दिल में।
13: That if a boy from Ahmedabad with no capital and no connections could build, then there must be 1,000 more Gautam Adanis sitting undiscovered.
14: जिनके आइडियाज हैं दमदार, वो सब हैं वंदे भारतम के नेशनल स्टेज के हकदार। तो इनोवेटर्स, रजिस्ट्रेशन करो vandebharatam.org पर 19 जुलाई तक। An initiative by Gautam Adani.
10: India Inc.'s most respected names chose India Inc.'s best and brightest.
15: These are kind of awards and jury lineup, you are truly giving it the right weightage.
16: I think it's

0: समर में बाल्टी तो चाहिए फॉर योर पसीना,
1: बाल्टी,
0: और मानसून में बाल्टी तो चाहिए फॉर छत का पसीना। पसीना मत बहाओ, बर्जर रूफ कूलेंट सील लगाओ।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: आपका पार्सल फिर से हमारे घर पे आया है।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
4: माँ भी हमेशा अपनी मार्क मस्टर्ड ऑयल में ही खाना बनाती थी, ये आपके लिए।
3: कुछ तो बात है इस दिल में।
5: पी मार्क द मस्टर्ड स्पेशलिस्ट सिंस 1933।

0: यू।
1: थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात।
2: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
1: अरे मेरे राजा।
3: वी आर ओवर जिमी।
4: हे, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपीएफ संभाल लेगा, आप अपना देख लो।
5: जानते हैं मैं एलीट मैट्रिमनी क्यों रेकमेंड करता हूँ? 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, लार्जेस्ट डेटाबेस ऑफ एलीट प्रोफाइल्स और 100% कॉन्फिडेंशियलिटी। एलीट मैट्रिमनी, इंडियाज मोस्ट सक्सेसफुल मैचमेकिंग सर्विस फॉर द एलीट।
6: In the

0: देश का टायर।
1: The software engineer with a big idea meets the smart market analyst. Meets the cool UI UX designer. Meets the gifted content writer. Meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
2: थोड़े में ज्यादा स्वाद यही तो है इसकी खास बात।
3: वाओ मामा, क्या स्वाद है।
2: अरे मेरे राजा।
4: We are over, Jimmy.
5: Hey, लाइफ में स्क्रैचेस तो आएंगे। गाड़ी के स्क्रैचेस को तो कॉस्मो पीपी अब संभाल लेगा। आप अपना देख लो।

0: खिचड़ी दी जाती थी।
1: 3 महीने होने वाले हैं, अब आया नहीं है अभी THR, तो वितरण रुका है अभी।
2: In Vidisha, 1-year-old daughter of Pooja Adivasi weighs just 4.8 kilograms. Pooja says ration comes occasionally but not regularly.
3: वो दलिया मिलिया मिलता है।
4: हाँ, दलिया मिलता है। हाँ। और क्या क्या मिलता है?
3: और कुछ नहीं मिलता, वो पेटे मिलती है सत्तू की।
4: अच्छा, कब से पहले कब मिला था दलिया?
3: दलिया अभी अभी मिला था और फिर वापिस बंद कर दिया, 15 दिन से अभी खाना मिला ही नहीं है।
2: The government admits there were problems in supplying take-home ration.
5: कुछ न कुछ हाँ दिक्कतें आई थी हम लोगों को बीच में, तो उसके लिए हम लोगों ने प्रयास किए हैं और अब आगे से सुचारू रूप से उस व्यवस्था को हम लोग कर सकेंगे।
2: The government is changing the structure of the scheme once again, but a hungry child does not know which department is in charge. With Anurag Dwari in Bhopal, Bureau Report, NDTV.
6: On that, we'll slip into a very short break. I'm right back. News and updates continues here on NDTV 24/7.

0: is not sure that they are going to get it in the house when the BJP is
1: Abbas Haider, Abbas Haider, your refusal to take a stand is going to worry Sanjay Jha a lot. Bol dije na, you had opposed it, you voted against it in April.
0: Already
1: say no, we will not vote for it.
0: Obviously, on 17th of April, this bill fell. The similar way, if they are getting it back, it is going to fell once again.
1: Okay, great.
0: Their intent
1: is categorical. Samajwadi Party is going to vote against it. Your whole, this tukka of Dimple Yadav wants to vote in favor of it. It's not working.
2: First of all, my dear friend Abbas Haider, ko main bata dun ki ye jo mathematics ka calculation kiya, ye to Amit Shah ji ne pichle session mein bataya tha. Aur unhone to bola tha, ek ghanta de do, main likhwa ke lata hun ye baatein. और सुप्रिया सुले को भी सर 20 सेकंड्स अब्बास जी 10-20 सेकंड्स देन यू कम इन उस अभी जब सुप्रिया सुले ने मराठी में बाइट दी तो उन्होंने ये गणित समझाया तो मैं तो सुप्रिया सुले की बात सुन के आपको गणित समझा रहा हूँ दूसरी बात उत्तर प्रदेश के लोग देख लो आपकी 120 सीट होने वाली है अब्बास भाई बोल रहे नहीं करनी है अब्बास भाई बोल रहे 120 सीट नहीं होनी चाहिए उत्तर प्रदेश की अब बाकी अब्बास भाई तय करे समाजवादी पार्टी तय करे हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है उत्तर प्रदेश की 120 सीट से इनको प्रॉब्लम है बिहार की 60 सीट से इनको प्रॉब्लम है महाराष्ट्र की 72 सीट से उनको प्रॉब्लम है मैं तो केवल दर्शक को बता रहा हूँ कि आपकी 120 सीट होने वाली थी ये अब्बास भाई बोल रहे कि नहीं करनी है
1: अब्बास हैदर
2: ठीक है कोई समस्या नहीं
0: ये दिस इज द पॉलिटिक्स ऑफ भारतीय जनता पार्टी पद्मजा जी यही करते हैं ये
2: अरे आपने मना किया
0: बिल नहीं लाए अरे साहब ये होने जा रहा
2: था है साथ में नहीं है
0: बैंक अकाउंट में आने जा रहे थे अब्बास हैदर कह रहे नहीं आने दो वरना तो हम 15 लाख दे देते काला धन विदेश से आने जा रहा था अब्बास हैदर कह रहे नहीं नहीं मत आने दो वरना उत्तर प्रदेश के हर आदमी को लाखों रुपए बैंक अकाउंट ये क्या बात कर रहे हैं मतलब जहां पे आप बिल भी नहीं लाए अभी टेबल बिल नहीं हुआ आप खुद कह रहे हैं कि नहीं नहीं अभी कोई बिल है ही नहीं कोई जेपीसी नहीं बनी कहीं कोई बिल स्क्रूटनी में नहीं आप हवा में जो है तीर चला रहे हो कह रहे हैं अब्बास हैदर ये कह रहे हैं
2: चलिए मैं इसको थोड़ा मैं इसको रियल कर देता हूं चलो रियल कर देता हूं पद्मजा की डिबेट के सुनिए ना सर सुनिए आप बोल रहे ना सब इमेजिनरी हो रहा है चलिए आई एक्सेप्ट पद्मजा ने आज ये डिबेट रखा है कि लेट्स अज्यूम दैट दिस बिल विद वुमेन्स रिजर्वेशन इज ब्रॉट आई एम सेइंग कि ये 120 सीट्स होगी उत्तर प्रदेश की आर यू सपोर्टिंग आर यू रिजेक्टिंग
0: सर पॉलिटिक्स इज नॉट बेस्ड ऑन अजम्पशन पॉलिटिक्स
2: अब देखो उत्तर प्रदेश के लोगों देख लो अखिलेश जी देख लीजिए आपके पार्टी के प्रवक्ता है
1: ओके लेट्स टेक दिस बियॉन्ड द रियलम ऑफ अजम्पशन एंड बिफोर आई कम टू यू संजय झा लेट्स पुट आउट द एक्चुअल नंबर्स एज थिंग्स स्टैंड राइट नाउ लेट्स डू अ नंबर ऑफ परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस व्हिच विल हेल्प यू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स कुड शेप अप इफ एंड सिंस शहजाद पूनावाला इज सेइंग दैट दिस इज नॉट इन द एजेंडा जस्ट एज येट इफ द गवर्नमेंट डज ब्रिंग इन the bill. Now the existing strength is at 358 and you see the math over there. In making this math, we have assumed that the DMK is going to be voting along with the NDA. You see that number of 22 there. So the magic number is 360 in Lok Sabha. Here the NDA is short by just 2. But if the DMK, and I'm predicating this only on what TKS Ellen Govan has said, if the DMK was to vote against the bill, then the NDA would be short by 24. And that is where this column of rest of the house, the 209 there comes into play. So the DMK is there. Could the others in that blue column, people like the JMM, the Shiromani Akali Dal, the 7 independents, others like the YSRCP, could they actually help the NDA shore up this number of 24? Shehzad Poonawalla, there'll be a lot of, like we've said, this is almost like a cricket match. Let me actually take this to Sanjay Jha. It's going to be like a cricket match because you're a cricket aficionado, Sanjay Jha, where every single number, every single run scored is going to be calculated. 24 short if the DMK doesn't vote with the BJP and just 2 short if the DMK does go along with the BJP. And to all appearances, they will because what has happened in Tamil Nadu? You decided to kick them in the teeth and go over to the TVK. So in a sense, the Congress will be instrumental in pushing the DMK towards BJP. Sanjay Jha.
3: Padmaja, let me tell you, in practical terms, if the DMK were to support the delimitation bill, it will be harakiri, an act of political suicide. It will become totally irrelevant in the Tamil Nadu politics the day following that vote. So the question of the DMK supporting the delimitation, frankly, is a very absurd proposition that the BJP is trying to propagate. The last

0: उनको कि अभी नहीं गया है, टेक होम राशन नहीं पहुंचा है केंद्रों पे अभी,
1: तो
0: पता है
1: क्या बोला उन्होंने?
0: आ जाएगा।
2: आम है फलों का राजा।
3: In the same town, helper Prem Bhai feeds children under a neem tree. The one-room Anganwadi is overcrowded with stored material. Around 40 children are registered here. But the center hasn't received take-home ration for over a month.
2: ताकत आती है एप्पल से, है ना, खाना जरूरी है।
0: 15 दिन हुए, नहीं तो अगले महीने तो आया था।
1: अच्छा।
0: हाँ, अगले महीने आया था।
1: 15 दिन से नहीं मिला।
0: हाँ।
1: तो इसके बारे में अधिकारी से बात हुई, क्यों नहीं आ रहा है, क्या वजह बताया कुछ?
0: अभी नहीं, आ जाएगा ना सर, आ जाएगा ना।
4: 15 दिन हो गए। जी 15 दिन से नहीं मिल रहा है। हाँ,
1: आपने बात की यहाँ पे आंगनवाड़ी में?
4: बात की, ये बोल रहे बोले आगे से ही नहीं आ रहा, आने वाला बोल रहे।
3: In Sagar's Katra locality, NDTV visited two Anganwadi centers. Together they serve over 30 children and more than 10 pregnant women.
5: 3 महीने करीब हो गए।
1: इसमें क्या क्या दिया जाता था?
5: इसमें गर्भवती और धात्री माताओं को THR के रूप में हलवा, गेहूं सोया बर्फी और खिचड़ी दी जाती थी।
6: 3 महीने होने वाले हैं, अब आया नहीं है अभी THR, तो वितरण रुका है अभी।
3: In Vidisha, one-year-old daughter of Pooja Adivasi weighs just 4.8 kilograms. Pooja says ration comes occasionally but not regularly.
7: दलिया मिलिया मिलता है।
1: हाँ, दलिया मिलता है। और क्या क्या मिलता है?
7: और कुछ नहीं मिलता, वो पेटे मिलती है सत्तू की।
1: अच्छा, कब से पहले कब मिला था दलिया?
7: दलिया अभी मिला था और फिर वापिस बंद कर दिया, 15 दिन से अभी खाना मिला ही नहीं है।
3: The government admits there were problems in supplying take-home ration.
8: कुछ न कुछ हाँ दिक्कतें आई थी हम लोगों को बीच में, तो उसके लिए हम लोगों ने प्रयास किए हैं और अब आगे से सुचारू रूप से उस व्यवस्था को हम लोग कर सकेंगे।
3: The government is changing the structure of the scheme once again, but a hungry child does not know which department is in charge. With Anurag Dwari in Bhopal, Bureau Report, NDTV.
9: On that, we'll slip into a very short break. I'm right back. News and updates continues here on NDTV.
10: This is morning shows the day. Markets often have other plans. By midday, the story can be very different. That's when the right insights helps you rethink the day. Trades, trends, the moves that matter. Join me, Nisha Poddar, for Markets at 12, your edge for every move.
11: That if a boy from Ahmedabad with no capital and no connections could build, then there must be 1,000 more Gautam Adanis sitting undiscovered.
12: जिनके आइडियाज हैं दमदार, वो सब हैं वंदे भारतम के नेशनल स्टेज के हकदार। तो इनोवेटर्स, रजिस्ट्रेशन करो vandebharatam.org पर 19 जुलाई तक। An initiative by Gautam Adani. यही है वंदे
9: भारतम। Your first move sets the day, and in markets, being early is the edge. The edge begins the night before.
13: Before India wakes up, the newsroom is already buzzing because the market rewards those who are prepared.
14: That's where we come in, tracking momentum and where the markets could move next.
9: I decode the global pulse, shaping the market mood.
13: I bring insights that help you make decisions that matter.
14: Insight by insight, call by call. That's how we give you a head start to the day's trade.
9: So get ready with us every morning before the opening bell on India Market Open.

0: जुलाई में भी नहीं मिला?
1: हाँ जुलाई, जून, हाँ अभी जुलाई में नहीं आया, जून में आया था, जुलाई में नहीं आया।
0: तो अधिकारियों से भी आपने बात की क्योंकि बताया?
1: हाँ पता है उनको कि अभी नहीं गया है, टेक होम राशन नहीं पहुँचा है केंद्रों पे अभी,
0: तो
1: पता है।
0: क्या बोला उन्होंने?
1: आ जाएगा।
2: In the same town, helper Prem Bhai feeds children under a neem tree. The one-room Anganwadi is overcrowded with stored material. Around 40 children are registered here. But the center hasn't received take-home ration for over a month.
3: ताकत आती है एप्पल से, है ना, खाना जरूरी है।
1: 15 दिन हुए, नहीं तो अगले महीने तो आया था।
0: अच्छा।
1: हाँ अगले महीने आया था।
0: 15 दिन से नहीं मिला।
1: हाँ।
0: तो इसके बारे में अधिकारी से बात हुई, क्यों नहीं आ रहा है, क्या वजह बताया कुछ?
1: अभी नहीं, आ जाएगा ना सर, आ जाएगा ना।
4: 15 दिन हो गए।
0: हाँ।
4: जी 15 दिन से नहीं मिल रहा है। हाँ
0: आपने बात की यहाँ पे आंगनवाड़ी में?
4: बात की, ये बोल रहे, बोला आगे से ही नहीं आ रहा, आने वाला बोल रहे।
2: इन सागर्स कटरा लोकेलिटी एनडीटीवी विजिटेड टू आंगनवाड़ी सेंटर्स। टुगेदर दे सर्व ओवर 30 चिल्ड्रन एंड मोर देन 10 प्रेग्नेंट वुमेन।
5: 3 महीने करीब हो गए।
0: इसमें क्या क्या दिया जाता था?
5: इसमें गर्भवती और धात्री माताओं को THR के रूप में हलवा, गेहूं सोया बर्फी और खिचड़ी दी जाती थी।
6: 3 महीने होने वाले हैं, अब आया नहीं है अभी THR, तो वितरण रुका है अभी।
2: In Vidisha, 1-year-old daughter of Pooja Adivasi weighs just 4.8 kilograms. Pooja says ration comes occasionally but not regularly.
7: वो दलिया मिलिया मिलता है।
0: हाँ, और, दलिया मिलता है।
7: हाँ।
0: और क्या क्या मिलता है?
7: और कुछ नहीं मिलता, वो पैकेट मिलती है सत्तू की।
0: अच्छा, कब से पहले कब मिला था दलिया?
7: दलिया अभी अभी मिला था और फिर वापस बंद कर दिया, 15 दिन से अभी खाना मिला ही नहीं है।
2: The government admits there were problems in supplying take home ration.
8: कुछ न कुछ हाँ दिक्कतें आई थी हम लोगों को बीच में, उसके लिए हम लोगों ने प्रयास किए हैं और अब आगे से सुचारू रूप से उस व्यवस्था को हम लोग कर सकेंगे।
2: The government is changing the structure of the scheme once again. But a hungry child does not know which department is in charge. With Anurag Dwari in Bhopal, Bureau Report, NDTV.
9: On that, we'll slip into a very short break. Come right back. News and updates continues here on NDTV 24/7.